सकता तेरा ये नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोची विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोची होनी चाहिदी है इंसान नूं वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दां दे राहीं अपने इना पवित्र वचना दे राहीं सानू ओ मत बख्शदे हन जिस मत नूं गुरु मत आख्या जांदा है, गुरु दी मत जो कि जीव दे जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव दे जीवन दे विच जिंदगी दे विच गुरु दी मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है, एवें नहीं असी आए। ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनों असी पूरा करना है। ये शिक्षा ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड के नाल सुनते हाँ पर इसनों असी बहुता ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, पर महाराज जी की बाणी इसनों बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखदे हन अपनी पवित्र बाणी दे विच

गुरु महाराज जी दसते हैं कि इंसान सानू समझाते हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द के राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राह च ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल का ख्याल ही नहीं, मंजिल का चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल से पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई जाता, मंजिल से पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा। तेरी मंजिल किते होर है, लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया है। असि इन्हां कीर्तनां नूं जे ते इस तरह सुनांगे कि असि अपने जीवनां नूं कोई इंस्पीरेशन दे के अगां तोरना है, तो जो साडा फर्ज बनता है वह असि करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागां दी गल है। नहीं ते साडी आदत नूं महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी नूं सुनानी चाहना थोड़ी जी। साड़ी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज की सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाण दा, कई तरह कहण दा। गुरु महाराज मनुख दे जीवन नू जानदे हन, ये सुन सुना लैंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप किया रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, फिर चुप किया रहिंदा है। जीवन दे विच ए एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलन तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं, वही कहते हैं कि जिथे तुसीं रुक गए हो, जिथे तुसीं अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसीं अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चों प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन होंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच भी कन पैंदे हैं।

आप अपनी सुरत नु वापस कर जोड़िए। गुरु महाराज जी आखते हैं, सुखी ओही हैं जेड़े अपने इस जीवन दे विच निज कर लभ लैणगे। महाराज जी आखते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, वो सुखी हन। असि सुख लभते हैं ना, असि सब सुख लभते, पर कहते ओही सुखी होंगे जेड़े अपना निज कर लभ लैणगे। जेड़े घर तो ही बाहर हैं और सुखी किवें हो सकते, वे घरे किवें सुखी हो सकते। जिनी घर जाता अपना से सुखी है भाई, सो बाणी दे विच थां थां थां थां ते अनेक पंक्तियां ऐसियां आंदियां हैं जिन्हां दे विच महाराज जी निज घर का जो कॉन्सैप्ट है, निज घर का जो विचार है वो सानू सुनाउंदे हन। थोड़ियां पंक्तियां मैं आप जी दे सामने होर अर्ज करा कि निज घर तो उन्हां दा मतलब की है, व्हाट डू दे रियली मीन बाई निज घर। आओ एक पंक्ति दे राही समझन की कोशिश करिए। कहते हैं

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा कर दे सन। गुरु महाराज जी आख दिन साडी भी एक गुफा है, असि एक गुफा दे विच रहने हां, पर ओ केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वो सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वह साडा घर है। सहज गुफा कर आसन।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उत्थे हरख अनंत सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसन सहज गुफा आखते हैं कि सहज गुफा घर आसन बांध्या, किते आखते हैं हरख अनंत सोग नहीं बीया, सोग घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जो एक तो हुंदा ना भी बनया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन कि मैं अपना घर उत्थे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उत्थे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उत्थे मृत्यु आंदी है, ना उत्थे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उत्थे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उत्थो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो। उस तो उरे उरे जितने भी घर हैं गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इस नू मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। यह है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नू गाओ।

वो बिल्कुल भुल गया है, वो बिल्कुल मरना भुल गया है, इस करके असि इत्थे अपना डेरा बना रहे हैं। कहिंदे हन ये डेरा नहीं है इत्थों अगां, ट्राई टू मूव फरदर। गुरबाणी दे विचों अपनी मंजिल समझो, निज घर नूं प्राप्त करना है जो कि तुहाडा असल डेरा है। कहिंदे हन मत्ती मरण विसारिया, इस मत्ती हुई मस्त मत ने जो कि दुनियावी रंग च मस्त है मरना विसार दिता है,

एक रात दे प्रौने तुसी इथे आए हो, पर आसां ऐदां बनियां होईयां हन जिवें कई युग तुसी इथे रहना है। बाबा जी आखदे हन गुरु प्रसाद जाने मेहमान, गुरु दी कृपा दे नाल अपने आप नूं इथे चंद एक दिनां दा मेहमान समझे तां किस दरगाह पावे मान, तां जाके नूं दरगाह च मान मिलना है, इज्जत मिलनी है, दरगाह च पहुंचना है। सो प्रौने दी तरह महाराज जी ने ए मेहमान दा मेटाफोर जो है ए क्यों लिया है, इसनु थोड़ा समझ लईए। क्योंकि मेहमान जदों किते जांदा है उसनु ए पता हुंदा है कि उसका घर नहीं है और उसने इथों जाना है, इस करके वो उस जगह दे नाल अटैच्ड नहीं हुंदा, उसकी तमन्ना अपने ही घर जान की बनी रहती है। हम साडे अपने दिलों च अपने उस घर जान की कोई तमन्ना नहीं, इत ही रहन दी है। जिवें मेहमान किसी के घर जाके फिर यह सोच के बह जाके हुण इत ही मैं रहना है तो कितना गलत एटीट्यूड होएगा। नंबर दो, जो मेहमान किसी के घर च जाता है तो मेहमान उस घर वाले दीजा अपनिया नहीं बना शुरू कर लेंदा। अकाल पुरख की यह सृष्टि है, अकाल पुरख सारियां वस्तुआं ते दाता हन, सब कुछ उसका है, लेकिन असी एक मेहमान की तरह जरूर आए हाँ पर बाद दे विच उस दीयां वस्तुआं नूं इकट्ठियां करनियां शुरू कर दिता। जिस घर च मेहमान आए हाँ हुण उसका वध तो वध जितना कुछ हो सकता है संभाल लो, इकट्ठा कर लो, जितना हाथ लगता है लगा लो, इसके हाथ होए तां सब कुछ ले। महाराज जी बाणी च आखदे ने कि ये बंदे दे वस होवे ते सारा कुछ इकट्ठा कर ले, कहिंदे तुसीं इकट्ठा करन लग पए हो, तुसीं ते मेहमान दी तरह आए हो, कुछ भी इकट्ठा करन दी जरूरत नहीं है, मेहमान दी तरह रहो। मेहमान नूं चीजां ऑफर कीतियां जांदियां हन बड़े अदब नाल सत्कार नाल वरतन लई, पर वो ये तां नहीं कि उन्हां नूं चक के अपने बैग दे विच पाणी शुरू कर देवे ते बाद कलेम करे कि मेरियां हन। अकाल पुरख वाहिगुरु सानू अत्यंत दाता सुख खुशियां बख्शता है, पर किसी भी चीज नूं ये आखना कि ये मेरा है उत्थे फिर मेहमान नहीं रह जांदा, उत्थे फिर चोर बन जांदा है। बिन नावे सब चोर।

संग हाथ जोर जोर कहूं आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो। राज करे खालसा आकी को न रह को ख्वार होए।

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

साहब जी महाराज के चरणा च मथा टेकिया, पांच पैसे श्री फल गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतिया, साहब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए चरण पकड़े साहब जी दे, ते चरण हाथ विच ना आए, ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ये कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ये जड़ा तू वेखना ये साडा वास्तव स्वरूप नहीं, वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया। इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ ते नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति जोत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ए वाक कहे सन सर्व सिखां दे अंदर, भई सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मैले, शब्द गुरु मन दिया। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने गुरियाई अपने हथी दिती, ते नमस्कार करके ज्योति जोत समा गए। उस समय का वातावरण एहो जिहा सी, सारी सिख संगत दे अंदर वैराग दा शब्द पढ़िया गया।

उनका वचन बसे जी ना ले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं देवे, भाई नशा के जाले खमाल अंगी के तनासरी शब्द श्रवण करो तिंता देवी।

जित नाम साचा, सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे, जिस मृत सब किल दिक पाप।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद। बड़ पागी गुर सतगुरु पाया, गुण गावत परमानंद। जप मन सतनाम सत सतनाम।

सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होइए। जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, तै अपार जगत कीनी, बड़ पागी हर जपना, बड़ पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

तिसते मुख नहीं मोड़ियो जैसी आग्या कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहाहों को दौरियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जानियो

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास्त मारी तेरा।

झूठी हस्ती पैदा हो गई है, उस दे दरम्यान दे विच एक फेक हस्ती जो है वो फॉर्म हो गई है, उसे नु ही होमे है, वही मैं कहती है, उस मैं नु ही सब दुख हैं, उस मैं नु ही मेरा मेरी है। अते जदों वो जड़ी गलत फॉर्म हुई वो हस्ती है वो परे हट जाएगी, दरमियान च वही दीवार है, और जदों वो दीवार टूट जाएगी उदों फिर जो साडा असल आपा है वो अंदर परमात्मा की ही जोत है, उसके दर्शन हो जाएंगे, और उसके वास्ते अरदास है, ये जाचना है कि ऐ संतों मेनू मार्ग दसो। गुरु महाराज जी ने शब्द को कितने ब्यूटीफुल ढंग नाल कंपोज किया है, पहला डिजायर पेश की है, ख्वाहिश पेश की है, तमन्ना पेश की है, फिर मार्ग लभण की इच्छा है, उसके वास्ते ढूंढ है, सर्च है कि ऐ संतों मेनू वो मार्ग दसो ताकि मैं उस मार्ग ते चल पावां, चलदा चलदा उस प्रभु नू मैं पा लवां। वो महापुरुष दसते हैं मार्ग ये है, रास्ता ये है, उस प्रभु नू मिलन दे वास्ते जो राह है उदे विच आहा आहा करना पैंदा है, उसनू हुण सुनो प्रेम दे नाल।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी। इस वक्त समा

0: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी केड़ा अंत न पार वारिया
1: अंत न पावत देव सबे मुल इंद्र महाशिव जो करी
0: अंत न पावत देव सबे